0: Cisco, ISTE, Cooler, Deep, Quicker, Induction, Airfryer लगाएं और ये खर्चों सामान को खर्च ले आता है तो सफाई पर ही बंद होते हैं सर वो ऐसा ऐसा को पानी लग सके तो सर ऐसा अप्लाइंसेस ऐसा को पानी लग सर
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको युट्युब तथा फेसबुकमा समेत प्रसारण भइरहेको

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: पलू एफ एम एक से एक दशमलव दुई मेगा हर्ट उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलह दुतु नगर पालिका पांच सोलह कुंभ

0: माया पावनालाई धीरे धीरे धीरे रगमाए बधाई तिमीलाई बधाई तिमीलाई
1: वाह वाह
2: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.

0: tire brand.
1: Classic Tinko 16th anniversary offer. Jati Masayu, Kati Mapayu. Budget trip package for Paiko Rosaiko. Abo Internet TV, the Wi-Fi 6 router, Bani Kati Mai Paincha. Classic Tinko Kuni Jani Plan Kari Ma Kari Khapta. Kuni Jana Rai, Fir Mahina Internet Bonus. Damasi Kate Jana Rai, Yu Bara Rajaku Internet Bonus. Sampalpa 980-100-4477. Classic Tink. Jati Mapayu, Kati Mapayu.
2: के तपाई झाड कम्मर घुरा गर्दन दुख्ने समस्या युरिक एसिड बाथ रोग नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ
3: यस्तै समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आदेश सम्झनुहोस्
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओपिडी सेवा
2: विशेषज्ञ ओपिडी सेवा
3: निशुल्क औषधि वितरण
2: सशुल्क फार्मेसी सेवा
3: फिजियोथेरापी सेवा
2: अकुपंचर सेवा
3: योग परामर्श सेवा
2: क्रियाकल्प सेवा
3: पूर्वकर्म पंचकर्म सेवा
2: क्षार सूत्र सेवा
3: जलौका सेवा
2: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू
3: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म
2: विस्तृत जानकारीका लागि
3: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैलीगाउँ काठमाडौँ फोन नम्बर 01-4110-6096 98514-2463

0: सुनिए भाजपा स्पष्ट विचार यू रेडियो नेटवर्क अहिले बिहान को 9 बजे
1: यह समय किसान पाइन प्रोडक्ट्स प्राली को हो
0: राष्ट्र को शान किसान
1: अ कंप्लीट फाइटिंग सॉल्यूशंस।

मिरिया सुदूरपश्चिम में तातो लहर सावधानी अपनाने आग्रह आज दिवसो गंडकी राती कोशी में ठूल पानी पर्ने संभावना अब देखि सार्वजनिक बस में लगे जागो प्रणाली लागू होने सामान को सुरक्षा संग यात्री को झोला हराने तथा साटी समस्या अंत्य होने रक्षा होल्डिंग सेंटर में रहता बाल

0: बोलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चुकिया
1: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भर पर्दो
1: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
1: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
1: उखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
1: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: उपभोक्ता को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ उखलढुङ्गा
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842808300

जीव बनने था सबके दूसरी से आज का आत्मता यति कार्पेट को विगत तीन दशक देखि को सुंदर साथ यति कार्पेट के कार्पेट को पछाड़ी यति को लोगो हिन्न नबिर्सिनु होला यति कार्पेट कार्पेट को शहंशाह।

0: Time check. Studio time. Studio time.
1: It's 1 p.m. दूसरे को एक बजे
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू
1: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: को अनुदान तलब भत्ता उपलब्ध कराने गरी निजी स्रोत में प्राथमिक तृतीय तह महिला शिक्षक आवश्यक रिहाई का योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मीदवार रितपूर्वक दरखास्त आह्वान पद महिला शिक्षक तह प्राथमिक तृतीय व संख्या एक जना पद को किसिम निजी स्रोत सीआईटीसी प्राप्त अनुदान तलब भत्ता खाने गरी आवश्यक न्यूनतम योग्यता कम्ती में कक्षा 12 वा शेष रह उत्तीर्ण गरेको अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिक तह में कक्षा शिक्षण गर्न सक्षम 18 वर्ष पूरा भई 40 वर्ष नलागेको नेपाली महिला नागरिक हुनुपर्ने छ। शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य छैन। निवेदन दिएपछि संस्था तथा विद्यालयले तयार गरेको एप्लिकेशन फर्म अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने छ। साथै उक्त फारमलाई आधार मानि छनौट गरिएको निवेदनलाई छनौट प्रक्रिया में सामेल गरिनेछ। तलब भत्ता तथा सेवा शर्त नेपाल सरकारी प्राथमिक तह का शिक्षकलाई तोकी बमोजिम तलब भत्ता तथा संस्था को नियम अनुसार अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। साथ ही विद्यालय तथा संस्थाले तोकी बमोजिम सेवा शर्त का अधीन जिम्मेवार वहन गर्नुपर्नेछ। दरखास्त दिने अंतिम मिति यही जेठ 13 गते दिउँसो 4 बजे सम्म।
1: सम्पर्क मिति स्थान यही जेठ 14 गते बिहान 11 बजे देखि दिउँसो 2 बजे सम्म। गर्मा मापी कर्म परीक्षा मिति स्थान सम्पर्क मिति को दिन जानकारी गराइनेछ। पाठ्यक्रम प्राथमिक तह को पाठ्यक्रम में आधारित हुने क्लासरूम इन द क्लाउड्स नेपाल संस्था तथा विद्यालय ने निर्माण गरेको प्रश्नपत्र को आधार में हुने परीक्षा का किसिम लिखित प्रयोगत्मक एवं कक्षा अवलोकन तथा मौखिक परीक्षा को साथ ही संस्था को नियमानुसार थप मूल्यांकन को साधन समेत प्रयोग हुन सक्ने तर लिखित चरण पार गर्नेलाई मात्र अन्य चरण में समावेश गराइनेछ। दरखास्त दस्तुर 1005 प्रस्तुतता नहुनुपर्ने आवश्यक कागजातहरू एसए र एसएलसी देखि मासिका योग्यता प्रमाण पत्र नागरिकता अनुभव भए सोको प्रमाण पत्रको फोटोकपी 2 प्रति दरखास्त विद्यालयमा सिसी दर्ता गर्न वा गार्मास 2019@gmail.com इमेल गरेर पनि पठाउन सकिनेछ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर प्रधानाध्यापक विनोद सिंह तामाङ 9842 9653। संस्था प्रतिनिधि डिरेक्टर अफ पार्टनरशिप एण्ड गवर्नेन्स शान्ति शेर्पा 9851 18 73 79। संस्था प्रतिनिधि एजुकेशन सपोर्टर लिडर छिरिङ तामाङ 9851 17 43 81। श्री गार्मा माध्यमिक विद्यालय सोनी तुटकुण्ड नगरपालिका 7 सुनकुण्ड।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना आदरणीय सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क राख् सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान
0: स्थानीय तह में दर्ता भएका ई रिक्सा को दर्ता प्रतिनिधि तथा नवीकरण करने संबंधी सूचना
2: यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भएका ई रिक्सा पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता गर्दा यदि कार्यालय जारी गरेको सकल बिल बुक भएमा सो को आधार में स्थानीय तहबाट सुरुवा फिर्ता गरेको निष्ठा समेत राखी सोही दर्ता नंबर कायम हुने गरी अघि खड़ा गरिनेछ। यदि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जारी गरेको सकल बिलबुक नभएको तर स्थानीय तहले जारी गरेको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बिलबुकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गरेको सवारी दर्ता नम्बर समेत उल्लेख भएको खण्डमा स्थानीय तहले जारी गरेको सकल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र राखी प्राधिकरणको नम्बर कायम गरी बिलबुकको प्रतिलिपि दिनेछ। त्यसै गरी यदि यातायात कार्यालयले दिएको जाँच पास प्रमाणपत्रको सकल करीमा पनि सोही सकल पत्र को आधार में यातायात कार्यालय जारी गरेको दर्ता नंबर कायम गरी सवारी दर्ता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि जारी गरिनेछ। सोझै स्थानीय तह में दर्ता भएका वा यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भएका यी रिक्साहरूको सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तह में जेएनजी को आंदोलन को क्रम में जली नष्ट भएको अवस्थामा स्थानीय तह में दर्ता भएका एवं कर चुक्ता गरेको प्रमाण को आधार में सकल सवारी दर्ता प्रमाण पत्र बिलबुक समेत राखी सरुवा दर्ता सरह दर्ता गरिनेछ। सेवा ग्राहीले नागरिकताको फोटो कपी दुई प्रति हालसालै खिचिएको फोटो सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको फोटो कपी सवारी साधनको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर देखिने गरीको फोटो सवारी साधनको पूर्ण भाग देखिने गरीको फोटो संलग्न राख्नु पर्नेछ। यदि स्थानीय तहमा सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको भएमा उक्त शीर्षकमा थप कर लाग्ने छैन।

0: 政府を殴ろうと待ってください。
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा प्रादुन क्षेत्र में नस्ता काट्न गाई वस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुने यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जानु आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखिदेश सिविल जुन बेसी उपभोक्ता समिति
2: यौनी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनी हिंसा को जोखिम में हुन सक्छन्। हिंसा समेकी असन्तुष्ट साथीलाई परिचित नातेदार र जोसुकीबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं। बाल बालिका को चालचलन बानी बेहोरा अभिभावक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं। बाल बालिकासँग नियमित सम्पर्क गर्ने गरौं।
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: পর প্রিন্ট মুখতর্ক রোকন্ড কবারি সাধনপুর নম্বর এটিন গণের সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারী সাধনকো বাস্তবিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिन्ट माग्न बैंक भोचर गर्न अघि सवारी कर तथा वस्तु एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बिमा आफूले बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Sound check. Studio time. Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: छब्बीस सालों से उखाण्डे के परिवार का चार जना बिरामी सगरमाथा मैराथन में आया अमेरिकी नागरिक ने लेख लगे उद्धार सगरमाथा आरोहण करने माइक हार्कर बने पहिलो वहाड़ोवाला अमेरिकी कूटनीतिज्ञ खालिंग राई समुदाय का कांक्षा आरोही मिलन राई द्वारा दोस्रो पटक सगरमाथा को सफल आरोहण पर्यटन बोर्ड में फोटो नेपाल दूसरे प्रथम आरोहण प्रदर्शनी शुरू ओखलढुंगा में मनसून करने विपद प्रतिकारी अभ्यास संचालन बीपी राजमार्ग को 400 बेसी खंड में 10 किलोमीटर ट्रक गाड़ी चलान सकने एमाले सचिवालय में अल्प मत में पड़े ओली महासचिव शंकर पार्टी पुनर्गठन को पक्ष में खुले होल्डिंग सेंटर में रहकर बाल बालिक को पठन पाठन तत्काल शुरू कर संसदीय समिति को निर्देशन सार्वजनिक बस में लगेज ट्रैक प्रणाली लागू होने अमेरिका में ग्रीन कार्ड का लगी आवेदन दिन स्वदेश फर्कन् पर्ने अमेरिका र इरान देश को शांति वार्ता को तैयारी तीव्र पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मनोहर तेहरान
1: काबा महिला भलीबल चैंपियनशिप में नेपालले किर्गिस्तान हरायो।
0: सहकर्मी संगे सरस्वती पुरी र अंजु कार्की विदा हुन्छौ। भोलि बिहान 7 बजे सोलो समाचार लिएर फेरि आउनेछौ। सूचना शिक्षा र स्वस्थ मनोरंजन का लागि सोलो एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।
2: हार्दिक निमन्त्रणा 2083 साल जेठ 11 र 12 गते सोलु दुखुम्ब नगरपालिका 10 किमिलमा निर्माण गरेको ओगेन सुरिङ गुम्बा तथा सेवा केन्द्रको प्रदित धर्मक गुरूटुङको पेमा थर्सुङ रिम्पोछे जूबाट राप्ली प्राण प्रतिष्ठा झिन्सा पूजा मानेको अभिषेक वाण हुने भएको हुँदा आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनी लगायत इष्टमित्र सम्पूर्णमा जानकारीको लागि यसै सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै राप्ली प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम पालन भई अभिषेक वांग प्रसाद ग्रहण करपूर्णमा इस सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध कर
1: 11 गते को दिन बुद्ध वाचन ग्रंथ काग्य वाचन करने 12 गते को दिन राप्ले प्राण प्रतिष्ठान झुंसा पूजा मारे अभिषेक वांग हुए
2: उलिमतासी अध्यक्ष लेमी शेर्पा कोषाध्यक्ष निमा शेर्पा सचिव एवं सम्पूर्ण गुम्बा परिवार सोलु दुखुण्ड नगरपालिका 10 सोलु खुम्बु
3: नेपाली सेनामा नयाँ सैन्य भर्ना सम्बन्धी सूचना
4: नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पदको दरखास्त आह्वान गरिएको हुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकतालाई नयाँ भर्नाका लागि आह्वान गरिन्छ।
2: स्थान श्री दुर्गापोक्स फोन ओखलढुङ्गा ब्यारेज ओखलढुङ्गा दरखास्त आह्वान मिति यही वैशाख 18 गतेदेखि जेठ 16 गतेसम्म दोब्बर दोस्रो बुसाई मिति जेठ 17 गतेदेखि जेठ 23 गतेसम्म थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 0 35 5 5 6 7 साथी भर्ना सम्बन्धी थप जानकारीको लागि यही पुस्तक 18 गतेको गोर्खापत्र दैनिक र नेपाली सेनाको वेबसाइट www.nepalarmy.in मा लगइन गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंभू
3: लो भाई, मुझे न सोचा अब क्या मलाई